पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो काट पा

0: दूत नाए तेरे छड जा, पूरन गुरु दी पहुंच लोक परलोक विच है। जिवें शहनशाह मेरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अकाल तख्त साहिब दीवान विखे सशोभित हन, आओ बनाओ बिरती दियां अखां, करो उस पवित्र अस्थान दे दर्शन जिथों दी चरण धूड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवते बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार जिथों दी चरण धूड़ी नूं लोचदे हन, साहिब जी सशोभित हन, गुरु के कीर्तन हो रहे हन, रब्बी अमृत बरस रहा है, दूरों दूरों संगतां आके ऐं समाधि लाई बैठियां हन, कीर्तन विच झूम रहियां हन, जिवें पिपल दे पत्ते दी न्याई, जिवें पिपल दा पत्ता हवा रुमक रही होवे तां झूमदा है, तिवें गुरु के सिख अमृत बरस रहा है कीर्तन दा, ते फिर ए रस पुंज रहे हन, जुड़े हुए हन निरंकार दे चरणां। कीर्तन दी समाप्ति हुई, एक सिख आ पुजा जो हजूर दे चरणां विच आके बड़े सुंदर दो दुशाले लिया के अगे रखे। गरीब नवाज, आप दी बड़ी कृपा हुई है, बड़ी मेहर हुई है, ए दुशाले मैं आप दी भेटा कर सकिया, कुछ समा पहले ही आप जी दे चरणां विच दर्शना लई पहुंचना सी, इदे नाल दे मैं दो दुशाले ले सन, पर जदों मैं आ रहा सा आप जी दे वल तां रस्ते विच पठाना ने घेर लिया, मेरे कोलों ए पट्टी दे पठान दो दुशाले खो के लै गए, नाले मैनू धमकियां भी देंदे रहे, नाले दुशाले भी लै गए। मैं आप जी दे वल आ रहा सा, पर फिर मन विच ख्याल आया कि गुरु दरबार विच खाली हथ किवें चला जावां, तां फिर मैं वापस कर गया, घर जाके फिर दुशाले तैयार करवाए हन गरीब नवाज, ते जंगलां विचों राती प्रभाती रस्ता कटदा होया आप दी कृपा दा सदका मैं इथे पहुंचया हां, ए आप दी कृपा है। गरीब नवाज, जे कदे ओ भी तुहाडे चरणां विच पहुंच जांदे तां बड़ी कृपा हुंदी। ता धन गुरु हरगोबिंद साहिब मेरी पीरी दे मालिक भाई बिधि चंद नूं बुलाया, भाई बिधि चंद जी सच्चे पातशाह जा भाई, पट्टी दे पठाना ने दो दुशाले खो ले हन सिख खोलो, ते तू जाके लैके आ, महाराज तुहाडी कृपा होवे, तुहाडी मेहर दा हथ जे सिर ते होवे ते केड़ी वड्डी गल है, आप दी पहुंच ता सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए, आप की नहीं करवा सकते, आप मेर दा हाथ रखो ते फिर केड़ी वड्डी गल है। भाई बिधि चंद सत बचन कह के पट्टी वल तुर पिया, रस्ते विच मुसलमानी लिबास दे कपड़े बनवाए जिवें मुसलमानियां पहन दियां हन, उस तरह दे कपड़े पा के अखां तक सिर्फ अखां खाली रहन दितियां, बाकी सारा बुरका चढ़ा लिया, ते किरपान अपने पास रख ली, ते गुरु दी किरपा नाल जा पहुंचिया पट्टी विच, ते सीधा ही फिर महलां विच चला गया, जां प्रवेश कीता अगे पटराणी अते होर राणियां बैठियां हन, ते जाके तलवार कढ ली, भाई जेड़े दो दुशाले नवे आए हन वो किथे हन, छेती लिया होए थे। छेती नाल भज के गए, दुशाले ले आंदे भाई बिधि चंद नूं दे दिते, भाई बिधि चंद अपना रस्ता पकड़िया, पर इतने तक उन्होंने रौला पा दिता, जो रौला पाया तो फिर चारे दरवाजे बंद हो गए। उच्चारण करो श्री, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਹਨ। ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ।

कुछ निंदा चुगली करने वाले भी खड़े, बादशाह के दरबारी भी खड़े। कबीर साहब जा पहुंचे, बादशाह ने देखे और बादशाह

0: संगत रहो, जौ की भूसी खाओ।
1: जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड।
0: कबीर साधु की संगत रहो, जौ

नानक कसम ले जाए कसम ले जाए हर खान नानक कसम ले जाए दबन दबर बम बर गर गरे दबर बम बर गरे।

नानक तू लेना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा तमन सदार रामदास।

को आस जगत गुरु की पार्श पेट परश करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हत्तरे ओ कसमल जाय हर घनन कसमल जा हर घनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास सरी दस सरी दस दस नाये रामदास सरी नाये रामदास सरी हम

रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। सतगुर सेव अलखगत जाकी।

आइए रामदास सर जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट देख कियो फिरत अदास को सितन सतगुर सुख पयो।

मैं बंदा बेखरीद सखाए मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चाए वो मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माने ने माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है सो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

दूजा कोई सतीरा खेल अखाड़ा जियो तुर दूजा और न कोई सतीरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभ जी पास सबके चौकीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई

जन को सब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान चरण चरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन पाल साखी।

पति गुरु सूरे हलत पलत प्रभ आप सोए कार्य होए सगले पूरे हर नाम जपत सुख सहजे हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होत साधु तुरे आवण जान रहे चित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुर नारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण गाओ

दूसरा शब्द शरण गुरु जी भरत नारायण पदार वसा पर वाणी गुरबाणी लागे तीन हस्ते।